0: president pe len nguri chuan nar cha choi mona dong thei lung le district atanga nom chu lom ma ti thu soin lom puinan pangpar thu zek le cheng sin khan ve ve an ha nani chan chin thari akas wani aizol tanga pon ani a voin chan da ni le chan ve chan chin thari pon ani ang prime minister narendra modi chuan pathian ni chomadar som pakhatian man ke bat program a ram chung le ram pon me pite the thu soile do na tuntum mi he tum za samthum poline turani he program hi akashvani le durarshan network pum pui air news website le news on air mobile application ate ti choni anga air news dd news pmo le information broadcasting ministry youtube channel ate live stream ni pokang karnataka chief minister nirebar sidaramaya choni min kham bana theluta state politics in manchin jamatum tho soi chanchamu mi te comment pusidaramaya chuan chief minister thar tora anrua chu sarkar sem tura som turin gafno rashin khalati a chief minister trump hil opposition leader trump hil oni to sidaramaya hian state budget hi trump som pasari a phar to a congress party high command rotna angin chief minister tangna banga heti la chief minister ata narin lo dk siva kumar thopui te ro anlom he ani shroi to pani te hian malang zel dan tur sei ho turin delhi an pan khal ani union home minister amit shah chon ram dang atanga dan kala lopem rute zong chuak tulet honle turin sarkarin theto pachhu ati nimena gandhi nagar lok sabha bil chunga phasona project cheng vaibel se jathum somni chung hua honna he thui sein push achuan sarkarin ram riven himle dan kala pemruk na noi bochu angai poimo he ti a west bengal sarkarin ram ria border security force te tana ram hector zaruk lai mai an pe chu lom thu soi bok ani
1: देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर
2: आवर गवर्नमेंट्स रिजोल्व इज टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री फॉर दिस पर्पस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोग्राफिक चेंज कमेटी दिस हाई पावर्ड कमेटी विल एग्जामिन द कॉजेज बिहाइंड द आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंजेस टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कंट्री सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस देम एंड ऑल्सो कंसिडर वेदर एनी न्यू लॉज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस द डेमोग्राफिक चेंज कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद in 1 year and we will work towards preventing artificial demographic changes
1: demographic change jo hai usko rokne ka hum kaam karenge
0: chanchin thar sarti top na na tlang pui union minister of state for housing and urban affairs tokhan sahu chuan sarkar la pin scheme hrang hrang aduan chu mi puiten an chhotrang kai theinan thok tu te tan la thar turin cha nec kal tangin kumma chungin mizorama cheng vibe system sam thum pakole noi ru khu masona na tho ani Karnataka Chief Minister Nirebar Sidaramaya chuan Nimin Khan bana theluta state politics in manchinjum atum thu soi Union Home Minister Amit Shah chuan rampon atang dan kala lopem rute zong chok tu le thonne turin sarkarin theita pachhu ati chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani

प्यारे श्रोता, ये FM जोई सोर शिमला साथ है और मैं हूँ आपकी RJ संगपी। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आज आप सभी हमारे साथ FM जोई में बने रहेंगे। इस प्रसारण में हमें संगति गीत सुनने को मिलेंगे सोनी लल नुनसांग पी सी लियानमिंग थे कोंग खार मोईते लसक नई थक तुरकन नहीं दो नहीं तुन सेगमेंट दहियान। इस प्रसारण की शुरुआत के लिए सबसे पहला गीत रहेगा सोनी लल नुनसांग द्वार गीत सहारा मुझको चाहिए और ये गीत चाहिए आप सभी FM लिसनर्स के लिए है।

अभी जो हमने सुरीली सी आवाज में संगीत सुना है वह है सहारा मुझको चाहिए, सोनी ललुन सांगी द्वारा गीत था। और यहाँ पे सबसे पहले संदेश आए हैं दुर्गेश नगनपुर से, अनिहानिन गुड मॉर्निंग आरजे नमस्कार अंतिया जी आप कभी नमस्ते। और यहाँ पे दूसरा संदेश आए हैं मेंगमोइते से, अनिहान लियान संग नमस्ते द्यूती नुआमले अरंतिया खत्म तक नु वकन इन मुले तेरो पीसी माजारते वइन हुन नोम तो कइन मन थेना दु सकन कन लान से वा जिंग सोफा खुनते निया चोइ ने पा एफएम जो वइलो ngai थतुरिन इन जवाई खान कन सोम से वा ट्विटर का या ये इन चोटिन लो ए पा एफएम जो वइलो ngai थतुर खान कन सोम से उनी अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और यहां पे अगला गीत रहेगा कुंखार मोई द्वारा गीत यीशु बुला रहा, और ये गीजे खास करके मैं मोई दुर्गेश नगनपुर और आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है।

प्यारे श्रोता, यह FM जो 107.7 है और मैं हूँ आपकी आरजे सांकुई। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में हमें आशा भोसले द्वारा गीत सुनने को मिलेंगे और यहाँ पे सबसे पहला गीत रहेगा आप जैसा कोई, और ये गीत आप सभी FM लिसनर्स के लिए है। तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा जवानी जाने मन, और ये गीत जो आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है, तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

प्यार श्रोता, इस समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और मैं हूं आपके आरजे सांगपुई और यहाँ पे अगला गीत रहेगा पिया तू अब तो आजा और ये गीत आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है। तो इस गीत का आनंद लेते हैं आशा भोसले की आवाज में, पिया तू अब तो आजा।

अभी जो हमने मस्सा गीत सुना था वो था पंप अप द भंगरा, बाली ब्रह्मभट्ट द्वारा गीत है। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा चाह हमने तुझे, और ये गीत खास करके मिंगमोई आपके लिए है। तो इस गीत का आनंद लेते हैं, चाह आपने मुझे, तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

यहाँ पे आपके संदेश आए हैं मैं मोहितियस से अनिहानिन लियांसांग ओमेगा सांगते तान लियाओ लियाओ नेक्साई प्ले ले तोरखा अरंतिया समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा रमता जोगी ताल फिल्म से लिया गया गीत सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज में तो इस गीत का आनंद लेते हैं रमता जोगी।

अभी जो हमने मस्ता गीत सुना है वो है अलीशा चिन्नॉय महालक्ष्मी और सोनू निगम की आवाज में आज की रात। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा कोई तुमसा नहीं, क्रिश फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं। एल जित साइलो वलो लंगा अनी हैनिन रिक्वेस्ट अरुण नैया एस पी इश्क हुआ कैसा हुआ दिखा गाय थाई ला रम चुआन रंतिया और हे मिनिट नावेल चिया ला कन नहीं हल्प लेना हुन कन सेगमेंट हिक कन नहीं तो मो जो बांग चुआन इन रंति चुआ रम दोन चिया लवा मिन लव शिया थियम खा गाय दोन ने ओ नेक्स्ट कन प्ले तुन ही इतान सिया ले में मिन लोन कन रुन लान जोग में यंग ओ ड्यूटी ले हुना इन ती चुआ सक कन लव तुम जोग दोन या समय आ गया है इस प्रसारण के आखिर गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा कोई तुमसा नहीं। इस गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सभी को शुभ दिन।

0: Hei hi aka Shivani Aizol FM zo oiza point pasari achanga puan chua ani chuti zong chu voin chomir tha ni somni pakwa zirtop ni a FM zo oi achanga kan hun tho khatna kan tho kan ti chua thei chu ani a ngai thatu te chunga lom thu kan soye seeming than sangi kan ni a control room engineer duty hi ke vanalruata ani kan hun tho ni na hi tlai dar li le minute somni pariat atringin kan chan le anga milangai thale cheu don nya ngai thatu te zong zong chunga ngai thatu te zong zong hun manwa bek ule
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
2: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंद्र सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरु मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्र यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरु मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून तक वहां पहुंचने की उम्मीद है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून में देशभर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said that orders and bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under-trial convict should be released preferably the same day or at the most the next day. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly.
4: The incident is very unfortunate. It should not have happened. Now that we have announced re-NEET, it should be conducted properly and done with care. This is our responsibility. We expect everyone's cooperation in this work.
3: Addressing students, Mr. Pradhan assured them that the government understands their concerns and acknowledged that their trust had been breached. He said the authorities had taken a tough decision because they did not want even a single deserving student's future to fall into the hands of examination mafias or become a victim of irregularities. Emphasizing quality and transparency, he said the decision was taken to maintain fairness in the examination system. The Delhi government will provide free travel in all Delhi Transport Corporation DTC buses to the appearing candidates for NEET UG 2026 examination, which is scheduled on the 21st of the next month. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said candidates can travel free in the DTC buses upon presentation of a valid admit card. She added that no student should face inconvenience on a day that holds such importance for their future. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today inaugurated India's first integrated next-generation aviation weather and fog monitoring system, SkyCast, at Indira Gandhi International Airport in New Delhi under the flagship Mission.

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वलबई। वेल दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है और उम्मीद करती हूँ कि आज आपका दिन बहुत ही अच्छी तरह से बीता होगा। एंड इस वक्त हमारे स्टूडियो में 5 बज रहे हैं और इस सेगमेंट का टाइम है ठीक 5:30 बजे तक। और उम्मीद करती हूँ इस आधे घंटे का हम खूब फायदे उठाएंगे, क्योंकि इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे हसीन गाने, जैसे फिल्म है हमारी अधूरी कहानी, माय नेम इज खान और सन ऑफ सरदार। एंड यस वी कुंते ते हाते ते मिंग मोइते आम के फाल ते खा रोदी लाल ले दे सदो ते कशिया जी रजा मते हो ते खमो सुवान सुवान तिहानी कन लो छु दिंग दिंग आ का दू सोंग हिलाई मी ही कन लो प्ले वेल ना चुमी छुंग चुआनिन अनलोन रिले चुआ चुआ दोन ती ही कशिया मो रन हल ले लोम दोन सिया एंग ले खोले कन लन लल देव ही कन प्ले दो दनी। ये है आप जो सुनने जा रहे हैं, ये है हमारी अधूरी कहानी।

कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता। दारू की दुकानों पे पड़ जाते ताले, मुर्गे भी घूमते ऐमे ही सड़कों पे साले। इमेजिन दुनिया विदाउट सरसों, बिना साग, बिना बटर, बिना लस्सी, बिना अस्सी, बिना तुस्सी। कैसी लगती दुनिया विदाउट कलर ऑफ दस्तार। सॉरी यार, दुनिया बेकार, बिना सन ऑफ सरदार।

0: कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। आराम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा। साड़ी त्वाड़ी एदी ओदी दुनिया को हमने सिखाई, इस कोलावरी डी की बारी तो बाद में आई।
1: तो दोस्तों, आपने जो सुना था हमारे मैचअप में अजय देवगन के आवाज में, बहुत ही प्यारी शायरियां जो कि थे स्पेशली हमारे सरदार भाइयों के लिए। एंड यस, फिल्म भी है सन ऑफ सरदार, तो फिर ऑफ कोर्स ये फिल्म है सरदारों के बारे में। एंड इस फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया था सोनाक्षी सिन्हा के साथ, एंड फिल्म बहुत ही कमाल की है। चलिए आपके कमाल मैसेज की ओर भी बढ़ते हैं। मतलवांग मिशन वेंगटंगियानिन Jay Lazam akati bol bol ngai lao zam te ti li wing ka kou lao ti vak vak su o anu ngai hiang ka ding rin ngani ahmi tia pon ni se tu ma ka lao lao moi deo deo kai ron play lao zwan kan tip tak mei te zi ni mi sar jay ron de mat lo ang ahian Jay Lazam ahi ron lao ton veel lut tu ka mi ka ron soy trai veel ta ni zi mo Jay Lazam akha aron in sang mar ma sa don hianin ka shia ron lu hun ahianin ron in tip pol viao don hianin ka shia ni hei kan ikan in chip thang mei thei ni teron ti to ti ma thuang a hian mo bora ka ron sang to jere sa wa iron lan vat vat ngai aron shan vat vat ngai ni hei kan ngak lel to ron sang to se hi kan ti mo ole yahan message aaya hai durgesh naganpur ki or se, aur durgesh likhte hain आज ही सिस्टर एफएम जोर पर एक ही फिल्मी गीत की एक ही कलाकार प्रोग्राम लाइव फोन इन एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम शुरू किया कीजिए जी, बहुत खुशी होगी। ओके दुर्गेश जी, आपके मन में जो एफएम जोर के तरफ इतना एक्साइटमेंट देखकर मुझे भी बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं जल्दी जल्दी लाइव फोन इन में आ जाऊं, लेकिन क्या करें, हमारे इस ड्यूटी के चार्ट में जो है हमारा ये जो लाइव प्रोग्राम है एक हफ्ते में दो शायद दो तीन बार ही होगा, हर दिन नहीं होता। लेकिन यस, जरूर फिर से जल्द ही हमारा ये जो लाइव फोन इन प्रोग्राम है ये फिर से चलने वाला है। आप हमारे साथ लगे रहिएगा एंड आपकी ये जो ख्वाहिश है ये भी जरूर पूरी होगी। ठीक है, आप हमारे साथ लगे रहिए। एंड माई डियर वी कुंग ते हियान इन सोकन ए लुक आर जे जवान मामरन ते ए खाई मिलो ए के पुआर पिंग पोंग खान ये हन एला तिचान इन हिलाया कि इन कलो कलो पोंग माम चान इन रन लूट ले फदोन्या ओ वी कुंग ते आ इतेल लो ही सोन कन था ही वांग लो मो नुआम ही कन तिलो सुवान चान इन मैसेज तुम तक तक देखा ओ इन इन वेजों देखा रन सोई उला कन तीती पाजे लंग। चलिए इसी के साथ इस खंड को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम सुनने जा रहे हैं माय नेम इज खान फिल्म से, जिसमें हमारे प्यारे शाहरुख खान एंड काजोल जी ने किरदार निभाया था, और यह है सूरज हुआ मध्यम।

चलिए एक झलक आपके एसएमएस की ओर। फिर से बढ़ते हैं सीज तहियानीन। एक रहीम बीर खालो प्लीला अमिताभ जाय खावंत्या सी जते ही एंगे एक रही ए एर एक रही बीर अंत्या त्यागे अमिताभ क्या रे संगाय ओम ही किशन ओर रेगम हो गई चु का बोल तुक तुने इधर रोन क्लान ही चु वंचा हन हन हन ब्राउस चले ते हन सोंग चले ते का का एंगे थूंगे निगाई न तोप तोप स्वान जेल सामा jero sama message ring ring is to the na song song ne nian in kan ngai thak chhiar chua angai thin kan ti to kha chuwang he na ya po he a thur on rile khop mai a kan chhiar chua leng lo in ring ru on na arji zol boy iran ti phot ta an ka ka shat ka shat son ka mood off te zanin tlai hindi rj ka du lo bear on duty lo su zari su kamu tui don lo siang sa te ron nui khitua ra si rahyan next song itan si sentia tliki na bag song su kati dan chin pang ai te te in si alvum tu rin gan tlang sakan tlang sak nap nap ang itan so o vl te itan so vl te lo shim shim zanin duty nua man dia jilil za mahit o ka mu hun na hi chuan in tih a kan tiang ka chibayang message hian an tui tha thei ko pa tih hian in ngai thla pe lo ang deuh hian in an ron in soi emaw hei a rel ru hi kan hrisi a vi kung te tero chuan chuan in tih hian in hei ama te hi chu hrang hlui kan tih te zing ami kha ani ve phato tho na chung hian a zia hi ala sweet 16 ve rewa chawang in mani rel ru chung rel te hi sai hi ala she ve de wo mo jel za ma hi chu tih hian a je vi li vi li a ron tianga a je vi li segment a chuan a je zwal boi a ti le ga tiang vel kha ne jel za kan chit siang tolu tokhi mo a a message kan mule trip tong in lovin ring wa and he then there das ji ne likha hai good afternoon rj ji namaskar akashvani as a station fm so band 100.7 megahertz very nice program english songs हितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगे रही है एंड यस आप आसाम से हो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे इस प्रोग्राम का बहुत महत्व रखते हैं आपके लिए बहुत मूल्य है इसलिए आप हमारे साथ लगे रहिएगा एंड ये हमेशा याद रखिए कि एफएम जॉय आपका एक इस प्रोग्राम में इस फैमिली में आप भी एक हिस्सा हो तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वाल हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग ये होगा माय नेम इज खान फिल्म से रंग दे

नमस्ते, आकाशवाणी एफ एम 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है अरजी जोलवी। आज का हमारा ये दूसरा खंड यही शुरू होता है। दोस्तों, आप अपने प्यार भरे एसएमएस बरसाना फिर से शुरू कर दीजिएगा। शायद इस वक्त आप खाना खा रहे होंगे या फिर अपने कहीं टहल रहे होंगे। जहां पर भी है आप हमारे साथ लगे रहिए। इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। सीजे ते विकुंगते ते दिन पुया ओमेगा ते गुड बॉय ते एलबी ते एक्सेट्रा एक्सेट्रा अधिकार सोते कने खम तो एमगे कने मैक ने सुवान सुवान रन लंगले ओके। यहाँ पे सबसे पहले आया है हितेंद्र दास असम से। उन्होंने लिखा है, हेलो आरजी जी, ट्यून इन बाय मिनी बॉक्स आकाशवाणी माय बंधु। आई लव यू बंधु आकाशवाणी रंतीने हितेंद्र दास क्यूट छीन तक है। हितेंद्र जी आप हमारे साथ लगे रहिएगा। और ये बंधु बहुत ही प्यारा वर्ड है ना बंधु। तो चलिए, ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करूंगी। एंड मिलूंगा इस खंड की सबसे पहली शुरुआत हम सुनेंगे तेरे लिए सोनिए रणवीर सिंह सरा अर्जुन के। सरा अर्जुन ने जिसमें किरदार निभाया था और फिल्म है धुरंधर।

बिल्कुल सो आपने जो सुना वो था धुरंधर फिल्म से एक बहुत ही प्यार सॉन्ग. ओके ओके मेगा सॉन्ग ते यहाँ ने एफएम एफएम जो यहाँ नर्जे त्यांग अंगा उमो इपे ये तुरखा विकुंग ते गुड बॉय में मोई ते अंगा ते पा बिल को थ्लिर ते तान नंग माँ मैं हो लवी नंती आ मेगा गवान लो मैं ओ मिलोंग आई थत्सर चरुआ चरुआ पा ते पोखानीन Suanin tayan good boy yan in RJ Zol boy buka fuck ding on and tia elo fuck mol mol ro FM so koi te hitu turo til na true eng poli tira ngay thak pa hi ol sam me me su fan son FM so koi hitu mai pal si hi nilo bing va thak buk si bing tlai buk nien mo sa ta ngay MM2 tiu gan lo tru chin buk nien hian in SMS te karon lang le sup sup tura ngay ze lang ti suanin नेक्स्ट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग. ये है रोये जसलीन और अरिजीत सिंह की आवाज में एक बहुत ही प्यारा गीत और गीत के बोल हैं हीरिए.

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जोर 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वाल बोई। और दोस्तों, आज के लिए हमारा सबसे आखिरी खंड होने जा रहा है। यस, आप अपने मैसेज हमें भेजना फिर से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस खंड में आप अपने मनपसंद के गीत भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओ इन दो जो पोखन थे दो नुवान ख्रु हौ खा ते फाल ते दिन पुत जेर जाम ते कुंग ते ते ओ खुयांगे नोम रोन लंग हाल छुआई छुआई रोले हितेंद्र दास ते पो ओम एस एम एस कारण थोनुला चुआन लथन दो जो इन पो खानी न रेम तो चलिए सबसे पहले इस खंड की शुरुआत करते हैं एक बड़े ही प्यारे गीत के साथ, हर जन्म के लिए। और ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, चलिए सुनते हैं।

दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा, हमारे स्टेशन में कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ गया है, इससे साउंड बाहर नहीं आ पा रहा, लेकिन फिर भी हमारे साथ लगे रहिएगा। अकेले दिन पो या लंगमाल सब में आरजी प्ले ले तो खा नमा तान ले लो आई सवे जोंग सोंग तान ले येंगे मोरगन छ छले लोग ने ओ टाइप कछियान जोंग सोंग ते तान कछियान दोर पुई मी ते ले पापारी पुतान कुंते तान ले आरजे जोंग सोंग तान ले मिंग मोई ते तान रन तियार दिन पो या वान नॉम होर होर एम ओ मैसेज रन दोंग रन लूट गल सब में या min lo ngai ven mo min lo thalhel to ni ti kha ka shi thei ngal ti khan ka ba nuam ka ban ti tak chu wang chuan in next he dal din pui tan liao liao ka play don ani to chali rek sam suneng ge bahut hi pyara song ye hoga pyar ho

दोस्तों, बीच बीच में आप मुझे बताते रहिएगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं, आप तक पहुंच पा रहा है, साउंड आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में फिलहाल इस वक्त हमारा साउंड बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप तक पहुंच पा रहा है तो प्लीज जरूर बताइएगा. नवाई था थे ये ते ते खामिन रन शिलु ला साउंड का क्लियर एम ला कर प्ले ते खानिन साउंड रन क्लियर एम ते ते खामिन ओ शिल पारो ओ अचान चु हे कॉल थिल निया तांग वेले से उसे थे थिल ते निया सिग्नल मन सिग्नल ते ही गन ममो एम एम या आकाशवाणी आचान मो अचवाही सिग्नल छा ही गन ममो एम एम रेगा खोआ वांग ते हियानि सिग्नल ते ही लो छले फो छिन बक्सिया चुवांग चुआन साउंड कलेम लागो रम प्ले ते खाना रिछवा केम ते खा ए एंगे मिन लो शत पुई दोन्या ओ चुआनिन ओके मैसेज का इन टाइप message ka in type mal mal me chu mi chung chuanin chu mi chung chuanin o hla play le kan tum me kang o oh.

हेलो हेलो हेलो दोस्तों, आप हमारे साथ लगे रहिएगा क्योंकि हम बहुत ही जल्द आपको हिंदी के गाने जो है वो आपको फिर से सुनाने वाले हैं। और हमारे प्रोग्राम में, हमारे इस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ गई है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो गाने हैं वो अच्छी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा। आप हमारे साथ लगे रहिएगा। तो चलिए, इसका इंतजार करते करते हम आपके मैसेज की ओर बढ़ते हैं। और मैसेज अनु त्वर त्वर में मैसेज अगस्या त्वर ठक में दो निस हम निस में कैसे में डायन सुवान सुवानीन अम सभी राज सुवानीन ओबे का सांग ते ने न ट्रेन मैसेज लो थिंगा। तुन आरजे तुन आरजे से सोई दो आयो में यांग मी हुआ न पंपा रुका कांगडोन तति प्लेले तुर कबी कुंग तेमिंग मोय तेंग हाक ते पाबिल कोतला ब कोतली तान ले नंग मा माय हाउ लव यू नरंती आ कबहन लोम तेरिंग एम ओ ओमेगा सांग ते हि सो तगा पो मेल थ्रट करिंग आदि पिया छलो ए मे दिंग वा मे मो चन चन चन ओके हितेंद्र दास उन्होंने लिखा है, हेलो आकाशवाणी आइजोल स्टेशन एफ एम जो बैंड 100.7, वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग्स शो। सो आई एम ठंडी होने गोरी को मूवी नेम प्रेम नगर। आकाशवाणी बंधु अमर जीवन अमर प्राण अमर जीवन साथी जान आकाशवाणी तुम्हारे के भालो भाषी रंतिया अमा के भालो भाषी वेथव। ओ हितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लगे रहिएगा। फिलहाल एक प्यारा सा सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगी जिसमें टाइगर टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन जी ने किरदार निभाया था। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये आपके लिए।

चलिए हितेंद्र जी, आपने जो रिक्वेस्ट भेजा था इसकी ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं जरूर SMS की ओर बढ़ना चाहूंगी। के वाला ये में अजय जो भी नंगे नाई वन से कपिया खा कथलंगा नी में ओ कम कमुतुई लौजाई श्राम रो रो दे के वाला ही एंग चिंगे ओ रन चोंग वाई ले तो दार कुआ नुला माही सानी चोंग वाई ने नी जेला कुंफू लो यानी ना मुत्ते ही छुआक माची ना मक ए मै चान जेल जाम यानी आज ये सो भाई करनी रिपोर्ट दूंगे मोटे रन जेला यानी ना रन हल्यान खत कलोइन ए तो फतंग ए थाउ थो दान जिन कलोइन रिपोर्ट अंग ओ के से सेगमेंट ए पे यंग मा गले से थेलो अंतिया ए जेल सामि चाक दो नन हारन थेंग वेते कप्ले तोय व्या वंग लाउ थो अंग सु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट, और इससे रिक्वेस्ट किया गया था हितेंद्र जी की ओर से। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, प्रेम नगर 1974 में ये फिल्म रिलीज हुआ था किशोर कुमार की ओर से। चलिए सुनते हैं ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट।

0: तो दोस्तों, आपने जो सुना, ठंडी हवाओं ने गौरी का घूंघट उठा दिया, वो था हमारे प्यारे से हितेंद्र जी का रिक्वेस्ट सॉन्ग। ओले ललिन पुया फल कोन वेंग लाई टंग हिया नाजी प्ले ले तुर खा नंग माता ने लुंगाई थवे जोंग जोंग तान ले कछियां ते दो पुई मी ते ताने आरजे जोंग जोंग तान रन तेल दिन पुई ही रन हॉल किम थे खोप में या फिल थे ने ओ जोन सी से ते हिया निन बान माइन कहो दे कंगाई तो चिया वेंग वोइन खान कलथन खा कलो सोई ले स्वाक मन तत्या एक रहे पति एक रहे हम अनाजी ने ओ देखा सारा दिखता से में एक रहे पति मो एक रहे पति एक रहे हम ओ है लाही अरे तो खूब मैं गई था कि अलो तो लो लो तुका मेरो सुन नवेद उमे खानी है तेरो है लाशे पत इसे पतो दू दू दू चिन तो ही जो कन ओ कन नाउ जोक जोक तो लो ती जो शावे दे रोम तेरो Ole engle khole kan ngai thang oh next time hian chuanin John August boy hianin ka pretty zin ta namaste tlong takin hola duty le pat don ya kong a film khul la next ta ron tia jeral za ma te ang minghal tak tak anom la ya o min mang e min du sak em em tu min ngai to em em tu John August boy ten hanom chin hi ka tha hi muang thin ani mo ole to na chuanin si se tan hatlan moi tak me kha kan ngai thadon ani ये गाना रिक्वेस्ट किया गया है हमारे दोस्त सीजत की ओर से एक रहे ईर एक रहे पति एक रहे हम दिखानिया ये कन अमिताभ बच्चन ये में ना असखानिया है लोगों इतना ओ
1: बोलगा स्टोरी बाद ईर बीर पत्ते And me. Ek rahen ee, ek rahen bee. Ek rahen patte, ek rahen hum. Ek rahen ee, ek rahen bee. Ek rahen

चलिए आपके SMS की ओर बढ़ते हैं। पारपरी पोहियानियन आज ये गलों आए थर रिंग इत लंगवाल के वाल खावन ट्रंग बॉय संसु एक दंग निलवा चंचन ओ मा अलेंगा अमुद पोल स्वाक लो इसे थिया में ये मत इन इत्सु ओई के वाल आ सीसीटीवी ही तम ते में ना लविन लविन लविन दिए के त्यांग फिल्म कर दे उते ओ इरेन लो लान याने ना नॉन पोन से ने बक्स इसे एंग माई थिल इंगे थुरु ही ओम थे लो के वाल ही चुमो अनवेंग नेम पापारी पुए ना लोन पुआन तफेक मेले इंग पोनी से तंगवाल तांसुआन हो हुन चेप तो कंटी दे उंगाल तोप में त्यांग जेले जामा हियान आज ये के चुला का रिक्वेस्ट लन आई नंग मा का थंग मेंग जे हंदी ला इलो मो मेंग तिका मा का थंग दोन सी लो वले वंदे ओए जेले जामा हिचु इ मेसेज रन टाइप अंग अंग ही अपोजिट अंग जेल ही करी रुआ लुठीन तिका कन सयंग आ चंचु आ जेले जामा थिल सोई ते हिचु मो अपोजिट जेल ही अनि तांग पुई जेल बोका चु वांगेन हे ते हिचु ngal deu si hianin kiu deu deu hian ron tong thina tikhanin aril ruwa sei le dan tur kha mo ronin a le khal le dan tur kha ron ngai to le char char don tikha ka she sa vek bokani chan si ze ta hian kumina zir lai lo ting de choi moina kan branch yma in kan neya he nu te re hi lo zai ka dore ul to te tungi aban mel thore ve zai thiam azai thiam mel boxia a ibeng te pot lai karing John August Boy hian English RJP Feli ro khum hi duty ngai to lo mi ari area anti a e kai hey duty te hi ni e kan duty hun te hi a fal ve thina chuan swan John August Boy khani lo ngai thade fun fun ze la regular tak khan te matakan RJF FAP run iran nan fule fat ka base on to chaliye dosto is khand ke liye ek bahut hi pyara geet hai ko main aapko sunana chahungi band of boys ki or se gori

तू ही मेरा प्यार गोरी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। चलिए जहीन ताना कन हुन नुनुंग कन उथलेंग तो आल नुनुंग बिर गई थाक तपो लो हुन लेता हुन ही आ कन विंग कन दंग जाऊ बक्सी लवा खमोम लो छीन कंगाई ले दोन से ए मेके वाला हेन आजी जवाल बुई कलेंग लो रेंग रेंग पार पारी पू खान अमा नी नाम नी दंग पो छीन कन कुमा इन रोल तक वांग नी मो कवे कवे तुल तुल से कन कुम ही इन रोल व करिंग लो के वाला मखते ए मे आ eng pod ni se pa pari pu hi sala vil ne shim shim che om oi jana gus bo hian ka priti sin ta mu tui suk suk le ka chaw ria te e lo ha dam song song ro i ha dam song song na tur la moi tak me kan ple nga ti chuan in he la nen hian ka mang tha don cheu ni kan in tong le cheu tur ang ai la sms q tak tak te miron thon thi na min ti hlim em em tu duty ti nuam tu te in ni ti kha kan han soi thale du bokani a तो दोस्तों आज के लिए ये हमारा सबसे आखिरी गीत सुनने का वक्त आ गया है। इस प्यारे से सॉन्ग के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम 100.7, आपके साथ है आरजे ज़वाल बोई। आप सभी को शुभ रात्रि मंगठा मुत्तुई वेक उलें।